0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर हाजिर है आपकी आज ही फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, जो तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती है, खैर मकदम करती है, वेलकम करती है उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है नॉन स्टॉप गपशप। और रहूंगी आपके साथ सुबह के 11 बजे तक, और 2243712 नंबर है जहां आप डायल करेंगे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और फिलहाल यही सोच रहे होंगे कि आज किस विषय पर बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है संडे का दिन है और आप सभी जो है म्यूजिक के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, और उसमें भी अगर देखा जाए तो दिल से दिल तक वाला चैनल बहुत लोगों का जो है प्रिय है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में। और कारण यही है कि ये है म्यूजिकली योर्स, रहता आपके साथ 24/7 ऑल डे ऑल नाइट। और कौन से विषय पे बात करूंगी, चलिए इशारे इशारे में समझ लीजिए, मैं एक गाना प्ले करूंगी और उस गाने में ही छुपा है आज किस विषय पर हम और आप गुफ्तगू करेंगे।

ऐसा है दोस्तों कि आज जो विषय है वो है कि इतना तो आप समझ ही गए हैं गाना सुन के कि कौन सा विषय है। जाहिर सी बात है कि इतना आप समझे होंगे कि यादों से जुड़ी बात है, तो जरूरी है ये कहना मेरे लिए भी कि हाँ, ये जो यादें होते हैं ना, बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े सुनहरे होते हैं, गोल्डन मेमोरीज कहते हैं। तो आज संडे के दिन क्यों ना हम और आप अपने उस पिटारे को खोलें और उसमें थोड़ा ताक झांक करें और खुशियों के कुछ लम्हों को उन यादों की तिजोरी से निकाल कर और आप से हम साझा करें और आप हमसे साझा करें और बीच में जो लोग श्रोता हैं हमारे वो भी सुनने का आनंद उठाएंगे। अब बात करूं अगर सुनहरी यादों की, तो एक इंसान के जीवन में बचपन का खेल, पहला प्यार, स्कूल कॉलेज के दोस्त और पहली कमाई, पहली कामयाबी सबसे यादगार सुनहरी यादें होती हैं। ये पल दिल के सबसे करीब होते हैं, बचपन और परिवार, माता पिता का लाड प्यार, बचपन की बेफिक्री और माँ के हाथ का खाना, खेल कूद और ढेर सारी बातें हैं। कई बातें तो आप भी बताएंगे। फिलहाल अगला गीत आप सभी के लिए।

फिल्म तारे जमीन से इस गीत को आपने सुना। रमन महादेवन की आवाज में प्रसून जोशी ने इसे बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया और शंकर ईशान लॉय ने संगीतबद्ध किया इस गीत को। और आज हम बात कर रहे हैं सुनहरी यादों की। और ऐसा है कि हर एक के जीवन में ये जो सुनहरी यादें हैं ना, मतलब क्या बताएं, वो खुशी का खजाना है। जब हम बहुत लो फील करते हैं, आंखें नम हो जाती है, किसी परिस्थिति में लगता है कि अब हम टूट के बिखर जाएंगे, यही वो समय होता है जब हम उस खजाने को खोले और उसमें से जो है बहुत प्रेशियस जो यादें है ना, वो हमें तरोताजा करती है, हमें रिलैक्स कर देती है, हमारे स्ट्रेस को उड़नछू कर देती है। और अगर मैं पहले शुरुआत खुद से ही करती हूँ, मेरे लिए जो सबसे बड़ी गोल्डन मेमोरी है वो सारे के सारे मेरी माँ से जुड़ी है।

और माँ की बात करते ही पता नहीं क्यों ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो अपनी माँ को खो चुके हैं कि माँ से जुड़ी यादें जो हैं वो हमेशा आपको सुकून पहुँचाती हैं, और ख़ास करके तब जब आप बहुत ही बिखर गए हो। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे माँ अपने हाथों से आपके दिल के हर एक टुकड़े को जो है वो फिर से वापस जोड़ रही हो।

0: देखते हैं म्यूजिकली योर्स पर कौन हमारे कॉलर फ्रेंड है जो जुड़े हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार
1: नमस्कार,
0: मैं किससे बात कर रही हूँ?
1: जी मेरा नाम दीपा है।
0: अच्छा दीपा, अच्छा ये दीपा ये बताओ तुम कहाँ से फोन कर रही हो?
1: मैंने फोन लगाया है डेरा बसी पंजाब से।
0: पंजाब से, तो चलो बल्ले बल्ले हो गई, पंजाब और वेस्ट बंगाल दोनों ही मिल रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। तो ये बताओ दीपा कि आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं सुनहरी यादें यानी कि गोल्डन मेमोरीज पर, तो ये बताओ कि आखिर गोल्डन मेमोरीज के हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या रोल प्ले करता है?
1: तो मुझे लगता है कि गोल्डन मेमोरीज हमें कहीं ना कहीं डाउन टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। हमें बहुत ही अच्छा इंसान बनाता है, सिंसियर बनाता है और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बनाता है। मतलब अगर मैं अपना टाइम शेयर करूं तो मेरा जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम था वो थे मेरे नवोदय के 6 साल।
0: नवोदय के 6 साल यानी कि स्कूल डेज, राइट?
1: यस।
0: तो उन दिनों में जो सबसे खूबसूरत बात हुआ करती थी वो कौन सी थी?
1: तो ऐसा होता था कि अगर पल को याद करना है तो मॉर्निंग के गार्ड अंकल जो हमें उठाने के लिए आते थे और आपको डिनर के टाइम पे मैथ अंकल के साथ लड़ाई करना कि अंकल डिनर नहीं अच्छा बना, तो हर एक मोमेंट हमें अभी भी याद है।
0: अच्छा मैं ये कह सकती हूँ फिर कि हॉस्टल लाइफ जो होता है ना वो हर पल जो है मस्ती भरा होता है ना?
1: बिल्कुल। तो जो अभी तक का मूवमेंट मैं याद कर सकती जो फनी है वो ये कि एक बार ऐसा हुआ था कि हम 11-12 में मैगी बना रहे थे और मैम की जैसी फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी तो ऐसा था कि इमरजेंसी लाइट जैसे ऑन हो जाती है हॉस्टल में। तो मैगी छुपा रहा है, कोई हीटर को छुपा रहा है और कोई तो सोने का नाटक कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 2 घंटे से वो इंसान सो रहा है।
0: यानी कि खूब मस्ती की पाठशाला, मतलब तुम्हारे लाइफ में जो है उसका एक बहुत बड़ा टाइम स्पेंड किया है तुमने मस्ती की पाठशाला वाली। चलिए बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा कोई और सुनहरी यादें जो तुम शेयर करना चाहोगी?
1: हाँ ऐसा होता था कि मतलब हम फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, इकट्ठे सजावट करना, एंजॉय करना, और ऐसा होता था स्पेशल ओकेजन पे हमारे मेस में टेस्टी खाना बनता था तो उस दिन तो कॉम्पिटिशन तो यही होता था कि लाइन में सबसे आगे जाएगा कौन।
0: अच्छा सुनो अब मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो तुम्हारे आवाज में चहक है, महक है खुशियों की, ये कहीं ना कहीं 107 एफएम रेनबो की देन है क्योंकि हम ऐसे ही टॉपिक्स लेकर आते हैं कि हमारे श्रोताओं के चेहरे पे जो है खुशियों से जो है वो उनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए, है ना, और सारे दिन जो है सारा दिन ये मुस्कान एज इट इज बना रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा दीपा तुम जुड़ी पंजाब से, यूं ही समय मिले तो बीच बीच में जुड़ा करना।
1: ठीक है, थैंक यू।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुनहरी यादें, गोल्डन मेमोरीज की. और गोल्डन मेमोरीज से कई सारी बातें जुड़ी हुई हैं, और मतलब वो इतना महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है हमारे जीवन में. हमारे जीवन में सुनहरी यादें का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को बनाए रखने में मदद करती है. मानसिक सुख और शांति, तनाव जो है शांति स्थापित करती है, और तनाव जो है वो कम हो जाता है, उड़नछू हो जाता है. जब हम जीवन में उदास या परेशान हो तो पुरानी अच्छी यादें हमें राहत देती है. सकारात्मकता की भी बात की जा सकती है इस विषय से जुड़ी हुई, क्योंकि सुनहरी यादें हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा और उम्मीद जगाती है, प्रेरणा का स्रोत भी है. मुश्किल वक्त में हिम्मत, पुराने अच्छे दिन और सफलताएं हमें बुरे समय से लड़ने की ताकत देती है. सीख और अपनापन भी जो है उसमें छुपा हुआ होता है. ये यादें हमें अपनों के साथ बिताए गए प्यार और रिश्तों की अहमियत समझाती है. और अब अगला गीत, पहला नशा, फिल्म जो जीता वही सिकंदर से, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में.

0: चुरी की घड़ी में समय उछला है 10:35 और फिलहाल हमारे टेलीफोन लाइन पे कोई कॉलर फ्रेंड हाजिर है। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार जी, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ, उल्बेरिया से।
0: सुमित्रा उल्बेरिया से। तो सुमित्रा आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। और ऐसा है कि आज जो हमारा विषय है वो है सुनहरी यादें, और मैं जानना चाहूंगी कि आपके जीवन के जो सुनहरी यादें हैं वो भी साझा करें थोड़ा अपने दोस्तों के साथ।
1: जी जी, मैं बोलना चाहती हूँ, और मेरा जो यादें हैं वो मेरा मम्मी से ही है।
0: हाँ।
1: और एक दिन की बात है तो मैं बोलना चाहती हूँ। तो मैं 2012 में तो मेरा मम्मी का हाथ टूट गया, ठीक है, तो प्लास्टर हुआ था, तो बाया हाथ, दाया हाथ ठीक था, तो मम्मी को मैं खिलाती थी, ठीक है, तो जो दोपहर का खाना, रात का खाना मम्मी को मैं खिला देती थी। तो कुछ दिन बाद मैं मम्मी से कहा कि मम्मी तुम तो अभी ठीक हो, तो खुद खा लीजिए। तो खाना दिया तो मम्मी ने मुझसे कहा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, तू ही खिला दे। तो मम्मी को मैंने पूछा कि क्यों, तो मम्मी ने उस वक्त कहा कि नहीं, तेरे हाथ से खाना मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत सुकून आता है।
0: मतलब ये इतने मतलब खूबसूरत लम्हे होते हैं ना, जिन्हें हम ताउम्र सजो कर रखते हैं, और शायद इसका जिक्र करते हुए भी आंखें नम हो जाती है। समझ नहीं आता है कि ये खुशी के आंसू है या गम के आंसू है, शायद दोनों ही मिश्रित होते हैं इसमें।
1: यही बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो बच्चे लोग हैं वो मम्मी के हाथ से खाना पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल। और जब मम्मी पापा जब वृद्ध हो जाते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करें, बड़े प्यार से, बड़ी मासूमियत से,
1: है ना। मम्मी ने जो मुझसे कहा तो ये याद मुझे हर वक्त बहुत अच्छा लगता है कि, और अभी तो मेरे मम्मी नहीं है तो ये बात मुझे हर वक्त याद आ जाते हैं।
0: माँ जो है ना, वो पता नहीं क्यों जब रहती है साथ तो भी मतलब उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है, और जब नहीं भी होती हैं तो भी उनका आशीर्वाद डबल हो जाता है हमारे साथ।
1: और भी एक बहुत सारी याद है, लेकिन और भी एक याद है, जो एक दोस्त को मैंने बहुत दिन नहीं देखी, लेकिन जब पहली बार उसको देखी ना तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और माँ और दोस्त जो होते हैं ना, ये जिंदगी को जो है वाकई में बड़े खूबसूरत बना देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुमित्रा आप जुड़ी कार्यक्रम में, और यूं ही जब समय मिले तो बिल्कुल जुड़ा कीजिएगा, क्योंकि जब आप श्रोता जुड़ते हैं ना तो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। खूबसूरती इसकी आप सभी से ही है। तो चलिए दोस्तों, अगला गाना आप सभी के लिए पोलुमी की आवाज में, यादों की अलमारी।

आज के दिन, आज के दिन सेगमेंट में यानी कि 16 अगस्त इतिहास के पन्ने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। यूं तो घटनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ एकाद मैं आपसे साझा जरूर करूंगी। जैसे 1691 में 16 अगस्त अमेरिका में योर्कटाउन वर्जीनिया की खोज हुई थी। 1787 में 16 अगस्त तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। 16 अगस्त 1906 में दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 8.6 की तीव्रता का भूकंप, 20,000 लोगों की जो है मौत हुई थी। 16 अगस्त 1924 नीदरलैंड तुर्की के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर। 16 अगस्त 1943 में बुल्गारिया के जार बोरिस तृतीय एडोल्फ हिटलर से मिले। 16 अगस्त 1990 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण लोपनोर में किया। रूस में अभ्यास के दौरान दो सुखोई विमानों की आकाश में टक्कर हुई थी। 2000 में 16 अगस्त को वर्नेटस सागर में रूस की परमाणु पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त। 2003 में अगर बात करें 16 अगस्त के दिन से जुड़ी कौन सी ऐतिहासिक घटना दर्ज की गई है, तो लीबिया ने लकरवी बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। 2004 की बात करें तो 16 अगस्त को ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी टीम ने ओलंपिक नौकायान में विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। वहीं 2006 में 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र परिषद ने हैती में अपने अभियान की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया था। 2012 में विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को इक्वाडोर ने राजनीतिक शरण दी। और जिन प्रमुख लोगों का जन्म हुआ था 16 अगस्त को, उनके बारे में अगर कहूं तो 1904 में 16 अगस्त को सुभद्रा कुमारी चौहान, स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और कहानीकार, उनका जन्म हुआ था। 1918 में टी गणपति, दूसरी लोकसभा के सदस्य, उनका जन्म हुआ था। वहीं 1920 में कोटला विजय भास्कर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व 9वें मुख्यमंत्री, उनका जन्म हुआ था। और 1970 में दो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी जन्म हुआ था 16 अगस्त को, सैफ अली खान का और मनीषा कोइराला का। 16 अगस्त को हुए निधन की जिक्र करूं अगर, तो सबसे पहले जिक्र करना बनता है 2018 में 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री में से एक थे, उनका निधन हुआ था। 1997 में 16 अगस्त नुसरत फतेह अली खां, मुस्लिम सूफी भक्ति संगीत की विधा कव्वाली के महानतम गायक, उनका निधन हुआ था। और अब रुख करते हैं अगले गीत की ओर। और जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात कर रहे सुनहरी यादों की, तो ऐसा है ना कि कॉलेज लाइफ में एंटर करते ही दोस्तों यारों की महफिल तो जमती ही है, और वो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। लेकिन आप सब इस बात को भी जो है ज़रूर मानेंगे कि हर एक इंसान के लाइफ में शादी जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उसकी यादें जो है ना हमेशा बड़े, मतलब जब भी आप याद करते हो तो

बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है आपके चेहरे पर। वैसे ये भी कहा जाता है कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन फिलहाल मैं शादी पर एक गाना जरूर आप सभी को सुनाऊंगी, ताकि आप जितने लोग सुन रहे हैं और आपकी शादी हो चुकी है वो उन लम्हों को याद करें और क्या, बस सुनते सुनते मजा उठाएं गाना सुनने का।

0: एक चुटकी नुस्खे।
1: एक चुटकी नुस्खे में अब संडे का दिन है और संडे के दिन बहुत सारे लोग सजते सवरते हैं और ग्रूमिंग करते हैं अपना। चलिए अच्छी बात है। तो मैं एक चुटकी नुस्खे में ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जिनके सर के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं, जब बाजार जाते हैं तो वहां से हिबिस्कस फ्लावर, वो लाल वाला जो फूल होता है ना, जो माँ काली और हनुमान जी को हम चढ़ाते हैं वही वाला फूल, हाँ, तो ये जो हिबिस्कस फ्लावर होता है, गुड़हल का फूल, जौबा फूल जिसको बंगला में आप कहते हैं, ये जो है ना, इसका देसी, जो देसी फूल होता है वो, हाइब्रिड वाला नहीं, उसको जो ले और उसको जो पहले साफ कर ले, पानी से धो लीजिए अगर बाजार से लाते हैं तो, और अगर आपके पास मतलब उसके वृक्ष हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, घर में अगर मिलता है तो और अच्छी बात है। उसको क्या कीजिए ना, अगर आप उसको अपने स्कैल्प पे, पहले तो आपका स्कैल्प साफ होना चाहिए और बाल गीले नहीं होने चाहिए, सूखे ही हो, और उसके स्कैल्प पे आप रगड़िएगा तो बहुत फायदा पहुंचेगा। और अगर सप्ताह में एक दो दिन अगर आप एक एक फूल खा भी लेते हैं तो वो भी बहुत लाभकारी होता है। तो आज एक चुटकी नुस्खे में यही था।
0: एक चुटकी नुस्खे।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 10:53 और फिलहाल आप सुन रहे हैं आपका ही पसंदीदा शो नॉनस्टॉप गपशप और मैं हूं आपके साथ आपकी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। ऐसा है दोस्तों कि जब हम बात करते हैं गोल्डन मेमोरीज की तो समझ ही में नहीं आता है कि किस विषय को हम सामने लाएं, किस विषय को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन ऑन द होल बात तो यही है कि ये जो सुनहरी यादें हैं जीवन के हर मुश्किल दौर में हमारे जीवन को बड़े आसान बना देते हैं। और अगर बात करें कॉलेज लाइफ की तो भला कॉलेज लाइफ का हर दिन जो होता था ना वो मतलब क्या बताएं, मस्ती भरा होता था। पढ़ाई लिखाई तो हम करते ही थे लेकिन वो पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर हम तब करते थे जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते थे तब, वरना बाद बाकी समय तो बस मस्ती की पाठशाला ही चलते रहती थी। और क्या है कि जब कॉलेज से मतलब क्या होता था कि जब छोड़ने का समय आता था तो दिल बहुत भारी हो जाता था क्योंकि यही रहता था कि फिर पता नहीं इन यारों से कब मुलाकात होगी। तो एक गाना मुझे याद आ रहा है इसी सिचुएशन को लेकर कि बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि कल वो अपने जीवन में क्या करेंगे, क्या बनेंगे। जाहिर सी बात है इतना सुनते सुनते आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि हाँ मैं कौन सा गाना प्ले करने वाली हूँ। और अगर आपने सोच रखा है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा तो आपने बिल्कुल सही सोचा है क्योंकि क्यामत से क्यामत तक फिल्म का गाना आपके लिए प्ले करूंगी। उदित नारायण की आवाज में इस गीत को सुनेंगे और इस गीत को सुनते सुनते अपनी आज ही फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को आज्ञा देंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैव अ फैंटास्टिक फैबुलस संडे। नमस्कार।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर,
1: रेनबो पर, 107 रेनबो पर, टीम का तड़का, आपके साथ हूं मैं संचिता। 3:03, जी हाँ, तीन का तड़का, जो कि आधारित है बॉलीवुड के कुछ चंक्स पर, कुछ न्यूज पर, जहां स्टार किड्स बनते हैं टॉक ऑफ द टाउन, जहां कमबैक करते हैं सुपरस्टार और बॉक्स ऑफिस बोलते हैं हाउसफुल। रीमेक की चर्चा हो या ओरिजिनल का जादू, ओटीटी की धूम हो या बड़े पर्दे का वादा, अवार्ड्स की रेस हो या वायरल रील्स का शोर, हर खबर में है मसाला, हर बात में है जोर। तो हो जाए तैयार दोस्तों, क्योंकि अभी आप सुनने वाले हैं तीन का तड़का, तीन नजरों से, तीन अंदाज से बॉलीवुड की गर्मा गर्म कहानी के साथ है तीन का तड़का। और शुरू करते हैं मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर जो है वो रिलीज हो ही चुका है। आप जानते हैं बड़े पर्दे पर लौटेगी गद्दी की जंग फिर से, और ये गद्दी की जंग जो है मिर्जापुर की लोकप्रिय दुनिया अब वेब सीरीज से निकलकर पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। 12 अगस्त को फिल्म का ट्रेलर सामने आ चुका है, जिसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रवि किशन और दूसरे प्रमुख किरदारों के बीच सत्ता और वर्चस्व की जो लड़ाई है उसकी झलक दिखाई दी। और कहानी में पुरानी दुश्मनियां, सत्ता की होड़ और बदले की भावना फिर केंद्र में दिखाई देती है। निर्माता कौन है? जी हाँ, फरहान अख्तर ने संकेत दिया है कि लगातार दर्शक मांग कर रहे थे कि मिर्जापुर को सिनेमा घरों तक लाया जाए।

ट्रेलर जो है, ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर भी चर्चा पैदा की है। फिलहाल हम सुनेंगे घनश्याम वासवानी को मिर्जापुर 3 से, गिनी दीवान ने इसे लिखा और आनंद भास्कर ने इसे संगीतबद्ध किया। और आप सुन रहे कार्यक्रम 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर। आपके साथ हूं मैं संचिता, 3:05।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है तीन का तड़का और आप सुन रहे हैं तीन का तड़का के अंतर्गत कुछ बॉलीवुड के चंक्स, कुछ न्यूज। 14 अगस्त 2026 बॉलीवुड के लिए बेहद महत्वपूर्ण रिलीज दिवस कहा जा सकता है। एक तरफ इमरान हाशमी की बहुप्रतीक्षित आवारापन 2 है तो दूसरी ओर सनी देओल की बटवारा 1947। दोनों फिल्मों की विषय वस्तु और दर्शक जो है दर्शक वर्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही रिलीज विंडो में आने के कारण इनके बीच बॉक्स ऑफिस मुकाबला खास दिलचस्प हो गया। शुरुआती एडवांस बुकिंग आंकड़ों में आवारापन 2 आगे दिखाई दे रही है और ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार देखें तो फिल्म की

एडवांस बिक्री ने बंटवारा 1947 को पीछे छोड़ दिया है। इससे स्वतंत्रता दिवस सप्ताहांत का मुकाबला और रोचक हो गया है। और शबाना आजमी के लिए एक विशेष सिनेमाई संयोग बनने जा रहा है बंटवारा 1947 आवारापन 2। दोनों जो फिल्में हैं दिखाई दे रही है, जो एक ही दिन में सिनेमाघरों में आई। ये स्थिति उनके लंबे करियर में बेहद दुर्लभ है। रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले 1983 में भी उनकी दो फिल्में, यानी शबाना जी की दो फिल्में एक साथ रिलीज होने का ऐसा संयोग बना था। इस बार खास बात यह है कि दोनों फिल्में बिल्कुल अलग तरीके की है और अलग तरह की कहानियां लेकर आ रही है, इसलिए शबाना आजमी की अभिनय विविधता को देखने का अवसर भी दर्शकों को मिलेगा। आप जुड़े हुए जिस कार्यक्रम के साथ वो है तीन का तड़का। 107 FM रेनबो पर आपके साथ हूं मैं संचिता। अरिजीत सिंह की है आवाज। अगले गीत में आवारापन 2 रेशमी विराग ने लिखा, अमल मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर,
1: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तड़का लगाते हुए इस सप्ताह ओटीटी पर हिंदी मनोरंजन का एक बड़ा आकर्षण कॉकटेल 2 है देखने को मिला। फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना प्रमुख भूमिकाओं में हैं और ये फिल्म रिश्तों और भावनात्मक उलझनों के इर्द गिर्द घूमती है और आधुनिक रोमांटिक ड्रामा के रूप में सामने आती है। 10 से 16 अगस्त यानी आज ओटीटी रिलीज कैलेंडर में इसे मुख्य हिंदी रिलीज के रूप में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि ये किसी पुरानी लोकप्रिय शीर्षक से जुड़ी नई कहानी है, इसलिए दर्शकों की उत्सुकता स्वाभाविक रूप से अधिक है। फिल्म का डिजिटल आगमन

इस सप्ताह की प्रमुख मनोरंजन खबरों में शामिल है। ओटीटी की बात छिड़ गई है तो एक बात और, संजय दत्त की नई फिल्म आखिरी सवाल इस सप्ताह ओटीटी दर्शकों के लिए उपलब्ध होने जा रही है। फिल्म को एक गंभीर ड्रामा और विचारधारा से जुड़े सवालों वाली कहानी के रूप में पेश किया गया है। इसका निर्देशन अभिजीत मोहन वारंग ने किया और इसमें संजय दत्त के सात कलाकारों की एक विस्तृत टीम दिखाई देगी। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म 14 अगस्त को लायंसगेट प्ले पर स्ट्रीम होगी और थिएटर रिलीज के बजाय डिजिटल मंच पर आने वाली ये फिल्म उन दर्शकों के लिए खास हो सकती है जिन्हें सामाजिक और वैचारिक विषयों वाली कहानियां बेहद पसंद है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे जिस गीत के साथ, वो है कॉकटेल 2 से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज। लिखा है इस गीत को अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया प्रीतम चक्रवर्ती ने। आप है जिस कार्यक्रम के साथ, वो है 3 का तड़का। 3:16 आप है संचिता के साथ।

107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का और आगे बढ़ते हैं। तड़का लगाते हुए 3:19 हो चुके हैं। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म जो है सामुक की वो लेकर इस सप्ताह नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की शूटिंग जो है 23 अगस्त लंदन में शुरू होने वाली है और इसका लगभग 90% फिल्मांकन ब्रिटेन में किए जाने की योजना भी है। फिल्म को एलियन सर्वाइवल थ्रिलर के रूप में बताया जा रहा है और इसका निर्माण विपुल अमृतलाल शाह कर रहे हैं। यानी अक्षय कुमार एक ऐसी शैली में दिखाई देंगे जिसमें उनका सामना पारंपरिक अपराध या सामाजिक कहानी के बजाय विज्ञान और सर्वाइवल से जुड़े जो तत्व हैं

0: उनसे जुड़ा हुआ रहने वाला है। तकनीकी टीम में हॉलीवुड के अनुभवी स्पेशल इफेक्ट्स विशेषज्ञ एलेक गिलिस जो है शामिल हो चुके हैं। सलमान खान इन दिनों अपनी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में बिजी हैं। बिल्कुल, सेवन डॉग्स है फिल्म का नाम, और अभिनेता ने फिल्म को फ्रेश और मनोरंजक बताते हुए कहा है कि बड़े पर्दे पर अनुभव करने वाली फिल्म है ये, और एक्शन थ्रिलर में मिश्र के कलाकार यानी कि इजिप्ट के कलाकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी जुड़ रहे हैं, जिनमें मोनिका वेलुची और जियान कार्लो जियानिनी जैसे एक नामी कलाकार शामिल है। फिल्म जो है 21 अगस्त को रिलीज होने वाली है, इसलिए 16 अगस्त का ये जो सप्ताह 10 से 16 अगस्त का था, इसके प्रचार के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। सलमान का ये प्रोजेक्ट बॉलीवुड कलाकारों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारतीय सितारों की वैश्विक अपील की दिशा में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, एक बहुत ही पुराना ट्रैक है, सोनू निगम साधना सरगम की आवाज, प्रसन्न जोशी ने लिखा और इसे जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म का नाम हम तुम।
1: चक दे
0: 3:21 आप जुड़े हुए हैं 3 का तड़का कार्यक्रम में संजता के साथ।
1: चक दे सारे गम,
2: चक दे
1: तेरे संग है हम।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।
1: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का, 3:26 और 54 सेकंड। तीन का तड़का में अगला सेगमेंट है, अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान के स्वदेश प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारे अमिताभ और शाहरुख को लेकर 12 अगस्त की एक चर्चा में प्रदर्शनों जो है प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित किया इस बात को लेकर कि अमिताभ ने शाहरुख के स्वदेश के लिए अभिनय को बेहद उत्कृष्ट बताया। स्वदेश को शाहरुख के करियर के सबसे गंभीर और संवेदनशील फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें उनके विदेश में सफल जीवन जीने वाले एक व्यक्ति की भूमिका निभाई जो भारत लौटकर ग्रामीण समाज में जुड़ता है। अमिताभ की प्रशंसा इसलिए भी खास है क्योंकि ये हिंदी सिनेमा की दो पीढ़ियों के शीर्ष कलाकारों के बीच जो है आपसी सम्मान को दर्शाता है। सलमान खान का एक डांस वीडियो इस सप्ताह सोशल मीडिया पर चर्चे का विषय बना हुआ है। वीडियो में अभिनेता अपने लोकप्रिय गीत जीने के है चार दिन के मशहूर डांस मूव्स दोहराते हुए दिखाई दिए। आसपास मौजूद लोगों की तालियों और उत्साह ने वीडियो को और आकर्षक बना दिया है। आगे बढ़ते हैं, बंटवारा, सनी देओल की बंटवारा 1947 पर बड़ी चर्चा। विभाजन की पृष्ठभूमि पर केंद्र है। सनी देओल जो है शबाना आजमी और प्रीति जिंटा अभिनीत बंटवारा 1947 इस सप्ताह सबसे चर्चित हिंदी फिल्मों में शामिल है। फिल्म का विषय 1947 के विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। राजकुमार संतोषी के निर्देशन और आमिर खान प्रोडक्शन से जुड़े इस प्रोजेक्ट ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज के कारण अतिरिक्त ध्यान आकर्षित किया है। फिल्म में सनी के साथ शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल और अली फजल जैसे कलाकार नजर आए। 14 अगस्त के रिलीज के कारण फिल्म का विषय राष्ट्रीय स्मृति और स्वतंत्रता दिवस की भावनाओं से सीधे जुड़ गया। सनी देओल और राजकुमार संतोषी पहुंचे नेताजी भवन। सुगतो बोस से की मुलाकात बंटवारा 1947 के प्रचार के सिलसिले में अभिनेता सनी देओल और निर्देशक राजकुमार संतोषी ने 13 अगस्त 2026 कोलकाता पहुंचे और ऐतिहासिक नेताजी भवन का दौरा किया। वहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू और इतिहासकार सुगतो बोस से मुलाकात की। सुगतो बोस ने दोनों को नेताजी की विरासत और उसके जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों से परिचित कराया और उनकी फिल्म को शुभकामनाएं दी। सनी देओल ने इस मुलाकात के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सुगतो बोस के प्रति आभार व्यक्त किया। आगे बढ़ेंगे हम एक गीत के साथ, मधुबंती बागची और जास्मिन सांडलास। जास्मिन सांडलास और शाश्वत सचदेव ने लिखा, शाश्वत सचदेव ने इसे संगीत से सींचा। फिल्म का नाम हम सभी जानते हैं, धुरंधर।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: सरकारी उद्यम और तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। वन ओ सेवन एफ एम रेनबो के अंतर्गत कार्यक्रम दिन का तड़का के अंतर्गत परियोजना प्रस्तुति में आज हम बात करेंगे भारत औद्योगिक विकास योजना के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या को मंजूरी दी। इसके तहत 33,660 करोड़ के आवंटन के साथ 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए गए। नोडल मंत्रालय की अगर बात करें, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इस उद्योग को लिया गया। शहरों के भीतर और उनके आसपास 100 निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क

युवाओं से 1000 एकड़ विकसित करना है। ये कार्य राज्यों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के लिए साझेदारी में किया जाएगा। ये योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से शुरू होकर 2031-32 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी। इसके लिए 33,660 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम यानी NICDC द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के तहत राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में किया जाता है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी या केंद्रीय PSU प्रायोजक एजेंसी के साथ पार्क का विकास एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV द्वारा किया जाएगा। इस SPV का गठन जो है DPIIT के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट तैयार किया गया है, जिसे हम NICDIT तहत राज्य की नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। SPV इस योजना के तहत सृजित जो परिसंपत्तियों हैं, उन परिसंपत्तियों का स्वामी होगा और विकसित किए जाने वाले औद्योगिक पार्क की योजना, निर्माण, संचालन तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी भी होगा। पात्र परियोजनाओं के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ तक की सहायता उपलब्ध होगी। निजी विनिर्माण कर्ताओं को के साथ साझेदारी में विकसित पार्कों को प्रति एकड़ 50 लाख तक के अवसंरचना लागत का 50%, इनमें से जो भी कम हो, सहायता प्राप्त होगी। वित्तीय सहायता निम्नलिखित जो है उस प्रकार से दिया जाएगा, जैसे कि आंतरिक सड़कें, भूमिगत उपयोगिता सुविधाएं, जल निकासी, साझा अपशिष्ट उपचार या फिर ICT और प्रशासनिक प्रणालियां इसमें संयुक्त होंगी। प्रदान की जाएगी जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि बाहरी अवसंरचना एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परियोजना लागत के 25% तक अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों के बारे में अगर बात करें तो प्राथमिक तौर पर विनिर्माण इकाइयां, MSME, स्टार्टअप और वैश्विक निवेशक को तैयार औद्योगिक अवसंरचना की तलाश में है, श्रमिक, लॉजिस्टिक्स प्रदाता, सेवा क्षेत्र के उद्यम और स्थानीय समुदाय के अनुसार होगा। जो इसका महत्व है, यानी भारत औद्योगिक विकास योजना का महत्व की अगर हम बात करें तो वो किस प्रकार है, सुधारणीय है, भविष्य उन्मुख है। औद्योगिक पार्क डिजाइन एकीकृत जो भूमिगत उपयोगिता है गलियारों के साथ हरित ऊर्जा और सतत संसाधन उपयोग सुनिश्चित होगा। इससे ऐसा माना जा रहा है जिससे कुशल रखरखाव और निर्वाध औद्योगिक संचालन के लिए खुदाई मुक्त वातावरण संभव हो सकेगा। बहुआयामी कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो बहुआयामी कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति के सिद्धांतों के अनुरूप नए मानक स्थापित किए जाएंगे। व्यवसाय करने में सुगमता होगी और पूर्व स्वीकृत जमीन तैयार अवसंरचना जो है सिंगल विंडो सिस्टम और राज्य द्वारा किए जाएंगे। निवेश अनुकूल सुधार किए जाएंगे और भव्य निवेशकों के लिए प्रवेश की बाधाओं को काफी हद तक कम कर दिया जाएगा। ये रोजगार सृजन जो है विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और सेवाओं के क्षेत्र में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। क्षेत्रीय औद्योगिक विकास किस

से होगा। क्लस्टर की हम बात पहले ही कर चुके हैं। क्लस्टर आधारित विकास के माध्यम से तथा उद्योगों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं की एक ही स्थान पर उपस्थिति को सक्षम माना जा रहा है। भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या की मंजूरी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत की यात्रा में एक परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है। जो देश के विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करता है, साथ ही ये कदम निर्यात को बढ़ावा देता है और एक सुदृढ़ समावेशी तथा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था की नींव भी रखता है। आज हम बात कर रहे थे भाव्या यानी कि भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत। परियोजना प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होता है।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।

आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज हैप्पी बर्थडे है, 16 अगस्त 1970 को जन्मे थे सैफ अली खान और साथ में महेश मांजरेकर, साथ ही में मनीषा कोइराला और डेविड धवन। जी हाँ, इन सब का जन्मदिन आज है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और एक गाना तो बनता है, इसीलिए एक गाना फहीम अब्दुल्ला की आवाज में, चांद मेरा दिल। अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा इस गीत को, सचिन जिगर ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है 3 का तड़का, 3:47, आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का संचिता के साथ आगे बढ़ते हैं। जिस चंग के साथ वो है अभिनेता वीर पहाड़िया की आगामी फिल्म प्रेम कीटाणु को लेकर 12 अगस्त को नई जानकारी सामने आ रही है। फिल्म को समकालीन मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें युवा भारतीयों के सपनों, महत्वाकांक्षाओं और संघर्षों को कहानी का आधार बनाया गया है। फिल्म में वीर पहाड़िया के साथ अपार शक्ति खुराना और आफिया सैयद भी दिखाई देंगी। निर्देशन अपूर्व सिंह कार्की का है और फिल्म की रिलीज 2 अक्टूबर इसी साल 2026 यानी गांधी जयंती के अवसर पर निर्धारित है। इस प्रोजेक्ट को युवा दर्शकों के से जुड़ने वाले कहानियों के रूप में देखा जा रहा है और वीर पहाड़िया के आगामी प्रोजेक्ट्स की सूची में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 13 अगस्त से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाला है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2026 ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सिनेमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार कर रहा है। समारोह में भारतीय फिल्मों और कलाकारों की विभिन्न श्रेणियों में मौजूदगी रहेगी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा अभिनेता जैसे श्रेणियों के लिए नामांकन पहले ही चर्चे में आ चुका है। बॉलीवुड के लिए साथ साथ अगर क्षेत्रीय भारतीय सिनेमा को भी इस समारोह में स्थान मिलता है तो इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह भारतीय फिल्मों को भारत के बाहर नए दर्शकों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी। आगे बढ़ेंगे हम रामायण के साथ। फिर से रामायण का 4000 करोड़ बजट पर फिर चर्चे में है। यश राज फिल्म्स और रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनत बहुप्रतीक्षित ये जो फिल्म है रामायण को लेकर 16 अगस्त को एक बार फिर बड़ी चर्चा सामने आई। फिल्म के कथित 4000 करोड़ के बजट ने भारतीय उद्योग में हलचल मचा दी है। इस पर अभिनेता यश ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि 4000 करोड़ की राशि केवल एक फिल्म का बजट नहीं बल्कि दोनों भागों से जुड़ी व्यापक प्रोडक्शन कॉस्ट के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी समझाया कि फिल्म की जो आर्थिक गणना केवल भारतीय बाजार के आधार पर नहीं बल्कि ये कहा जा सकता है कि लक्ष्य ग्लोबल ऑडियंस से है और फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा के नेतृत्व में किया जा रहा है। निर्देशन नितेश तिवारी का होगा। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने इस इंडिपेंडेंस डे को भारत से दूर मेलबोर्न में भारतीय संस्कृति और सिनेमा का गौरव बढ़ाया। 15 अगस्त को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में रेखा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराती हुई नजर आई। एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इस 17वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में भारतीय सिनेमा के कई प्रमुख कलाकार और फिल्मों को सम्मान मिलेगा। एक बार फिर डॉन 3 से जुड़ा विवाद 16 अगस्त को यानी कि आज फिर सुर्खियों में आया है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने फिल्म से जुड़े विवाद को लेकर इंडियन मोशन पिक्चर प्रोडक्शन एसोसिएशन यानी कि IMPPA का रुख किया है। रिपोर्ट्स ने बताया गया है कि रणवीर सिंह की टीम मीटिंग के लिए तैयार हो गई है। डॉन 3 पहले ही कास्टिंग और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को लेकर लंबे समय से चर्चा में रही है। अब प्रोड्यूसर्स तथा रणवीर सिंह की टीम के बीच संवाद की खबर ने इस बहुचर्चित फ्रेंचाइज को फिर हेडलाइन में ला दिया है। आगे बढ़ेंगे प्रीतम नीरज और मोनाली ठाकुर की आवाज को लेकर। समीर ने गीत लिखे और प्रीतम ने इसे

0: संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम रेस।
1: खाब देख के छोटे मोटे पत्तियां बनाए कैसे।
0: 3:54 55 सेकंड।

अमिता का आप जुड़े हुए थे कार्यक्रम तीन का तड़का के साथ, और ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है गर्मा गर्म न्यूज चंक्स के साथ। अगला कार्यक्रम है 5:20 पर FM गोल्ड के अंतर्गत कार्यक्रम चाय और क्लासिक लेकर आएंगे। तब तक सुनते रहिए इस गीत को और अगले कार्यक्रम के साथ रहिए।

0: अभी आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी। ये एक ऑडियो संस्करण है।
1: योजना करेছেন ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রক।

0: जादू की बारात।
1: रेनबो पर कार्यक्रम है यादों की बारात, लेकिन आज आपका और मेरा सफर यानी मैं हूं आपके साथ संचिता, सिर्फ 15 मिनट का है, तो इसलिए आज हम बात करेंगे यादों की, उन गलियारों में झांकेंगे या जाएंगे जब ये फिल्में रिलीज हुई। कुछ ने कंप्लीट किए 19 साल तो कुछ ने 50 साल से भी ऊपर। बात करेंगे 2007 में रिलीज हुई फिल्म चक दे इंडिया के बारे में, जो कि 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी और आज इसने कितने साल पूरे कर लिए, 19 साल। जी हां, क्या आपको पता है कि चक दे इंडिया की कहानी अचानक नहीं सूझी। लेखक जयदीप साहनी ने 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत के बारे में पढ़कर ये विचार आया। उन्हें हैरानी हुई थी कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद महिला खिलाड़ियों को उतनी चर्चा नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। इसके बाद उन्होंने महिला हॉकी पर रिसर्च शुरू किया और स्टेडियमों में जाकर खेल को करीब से समझा, यानी कबीर खान की कहानी की पहली सीटी एक अखबार की खबर से बजी थी। फिल्म का कबीर खान काल्पनिक चरित्र है, लेकिन उसके पीछे वास्तविक हॉकी जगत की कई प्रेरणाएं थी। जगदीप साहनी ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कोच महाराज कृष्ण कौशिक से भी काफी जानकारी ली। बाद में वास्तविक जीवन में हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी भी फिल्म की तैयारी से जुड़े और खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। हालांकि नेगी ने स्वयं स्पष्ट किया था कि फिल्म उनकी जिंदगी की सीधी कहानी बिल्कुल नहीं है, इसलिए कबीर खान को किसी एक व्यक्ति की हूबहू कहानी मानना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो फिलहाल हम इसी फिल्म से एक गीत आपके नाम करते हैं, सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मारियाना डी क्रूज की आवाज। जगदीप साहनी ने गीत के बोल लिखे और सलीम सुलेमान ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम यादों की बारात संजता के साथ।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है यादों की बारात। आपके साथ हूं मैं संचिता। बस एक और फिल्म का नाम, जो 16 अगस्त यानी कि आज ही के दिन 1985 को रिलीज हुई, 41 साल पूरे कर लिए। और अगर हम बात करें शोले के रिलीज को लेकर, तो कुछ लोगों के मुताबिक इस फिल्म ने 1975 में रिलीज हुई ये फिल्म और 15 अगस्त को रिलीज हुई थी, इस हिसाब से 51 साल पूरे कर लिए। क्या आप जानते हैं कि राम तेरी गंगा मैली की प्रेरणा किसी लंबी पटकथा से नहीं बल्कि एक गीत से जुड़ी थी? संगीतकार रविंद्र जैन ने एक समारोह में एक राधा एक मीरा भजन गाया। राज कपूर इस गीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जैन से दोबारा वही गीत सुनने को कहा और उन्होंने अपनी अगली आरके फिल्म के संगीत देने का वादा किया। आगे चलकर यही गीत फिल्म की कहानी और भावनात्मक दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। सिनेमा इतिहास में इस फिल्म का स्थान इसलिए भी खास है क्योंकि राम तेरी गंगा मैली राज कपूर की अंतिम निर्देशित फिल्म थी। उन्होंने कहानी, निर्देशन और संपादन जैसे कई महत्वपूर्ण रचनात्मक पक्षों में भूमिका निभाई। फिल्म 16 अगस्त आज ही के दिन 1985 को रिलीज हुई और उनके निर्देशन करियर का अंतिम अध्याय बनी। दिलचस्प बात यह है कि जिस फिल्म को दर्शकों ने प्रेम, संगीत और विवाद के कारण खूब याद रखा, वही फिल्म बाद में राज कपूर की सिनेमाई विरासत का अंतिम पड़ाव साबित हुई। इसी के साथ जी हाँ, एक गीत तो बनता है, सुनना सुनेंगे इस गीत को।

सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज, और यही गीत है इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, राम तेरी गंगा मैली। आठ बजे से आपके साथ होंगी सुचिस्मिता लेकर इसी कार्यक्रम को। तब तक सुनते रहिए इस गीत को। इजाजत दीजिए संचिता को।

0: 8:45। अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग की ओर से।
1: ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम बाय अंकिता सरकार माइग्रेशन एंड असाइलम प्रोजेक्ट एंड संजू कुमारी मेंबर वन स्टॉप सेंटर। This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का? और ऐसा तो नहीं है, तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासाई क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है। और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनको और मजबूत

0: किए जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीबी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीबी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉस कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए, वो डीबी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना है, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करें, और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहां वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं, ये सोचना भी जरूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले क्या एक्ट के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है, और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नैविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: Continue with a talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
1: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं, दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देखरेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज्यादा घबराती है इस बात को लेके कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड अगर वो आती है हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं, साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं, ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है, उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से वो निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे में निकाल दी गई है तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का शेल्टर मिलता था परंतु अभी बढ़ा कर ये शेल्टर 20 दिन का कर दिया गया है ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो वहां पर उसकी कंप्लेन लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है वो उसको बहुत इजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है, कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर, 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं, उसके द्वारा वहां पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हो या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है, कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है, उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है, सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है, जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में NGO के साथ में या फिर हमारे जो लोकल NGOs वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो

0: डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपर रीजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल जाती है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगी, यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका सिंगल हाउस होल्ड है वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं। पहले तो आप अपने उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है, हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है। पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी, और ये चीज हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा केस सीट पे, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One-Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanju Kumari, member, One-Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: यादों की बारात।

8:03 स्टूडियो की घड़ी में वक्त, मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, जिसका नाम है छायालोक यादों की बारात, संडे इवनिंग में और आप।

नमस्कार दोस्तों, मैं सुचिष्मिता आप सबके साथ 8:08 स्टूडियो की घड़ी में वक्त। और आज यादों की बारात में हम बात करेंगे इस 15-16 अगस्त को जो फिल्में रिलीज हुई थी पिछले साल या किसी भी साल उनमें से कुछ फिल्मों की। तो ये जो है 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब हम याद करते हैं अपनी आज़ादी से जुड़े चीज़ों को। आज़ादी सिर्फ हासिल नहीं की जाती, उसे हर पीढ़ी तक हर तरीके से महसूस कराई जाती है। और ऐसे में आज 16 अगस्त, कल हम लोगों ने 15 अगस्त को अपनी जो है स्वाधीनता दिवस मनाया हमने। और जो है ऐसे में किसी भी देश के लिए देशभक्ति सीमा पर खड़े जवान हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए तिरंगे के नीचे खड़ा एक खिलाड़ी, किसी के लिए देश की व्यवस्था को बेहतर बनाना ही उसके लिए देशभक्ति है, और किसी के लिए आसमान में या उससे आगे जाकर अपने देश का नाम लिखना, उसे रोशन करना सपना हो सकता है, उसके लिए वही देशभक्ति हो सकती है। तो देशभक्ति के कई रंग हो सकते हैं और बॉलीवुड ने भी देशभक्ति के सिर्फ युद्ध वाली कहानियां ही हमें नहीं दी, उन्होंने हमें ऐसे ऐसे रंग दिखाए हैं देशभक्ति के जो हमारे अंदर ही है। आज हम बात करेंगे ऐसी फिल्मों की जिसमें अलग अलग रंग दिखते हैं। आज हम बात करेंगे 4 फिल्में ऐसी जिसमें अलग अलग रंग दिखेंगे हमें हमारे देश के। हम आज बात करेंगे एक था टाइगर, सत्यमेव जयते, गोल्ड और मिशन मंगल की। शुरुआत करते हैं 2012 में आई सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर से। उस फिल्म में सलमान खान जो है रॉ एजेंट बने थे और कैटरीना कैफ जो है जिन्होंने जोया का अभिनय किया वो भी एजेंट बनी थी, लेकिन वो पाकिस्तानी एजेंट बनी थी। टाइगर इंडियन रॉ एजेंट और जोया पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट। टाइगर को एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट पर नजर रखने के लिए बाहर भेजा गया, देश के बाहर। वहां वो मिशन पे गया जहां वो जोया से मिला और वहीं से कहानी को रंग मिले, मौसम मिले, गीत मिले। और रुक करते हैं गीत की ओर।

बातें हो रही थी एक था टाइगर फिल्म से, तो कहानी में ट्विस्ट वहाँ आता है जब टाइगर को पता चलता है कि जोया सिर्फ एक आम लड़की नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की ISI से जुड़ी एक व्यक्ति है। अब ऐसे में एक तरफ देश है और एक तरफ वो लड़की जिसे वो पसंद करने लगा था, और ऐसे में फिर कहानी दूसरी तरफ और भी आगे जाती है। और लेकिन फिल्म में असली खूबसूरती सिर्फ एक्शन नहीं है, उसमें प्यार दिखाया गया है। और इस सब के साथ शुरू होता है डबलिन से इस्तांबुल और आगे कई

परीक्षा तक पहुँचे वो लोग एक दूसरे के साथ, और कहानी में बहुत कुछ हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या एक जासूस अपने देश से जो इतना प्यार करता है वो किसी दूसरे मुल्क के जासूस से प्यार कर सकता है? कैसे? अगर हाँ या ना। अब ऐसे में एक तो टाइगर के साथ और भी दो फिल्में आईं, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, और सभी फिल्मों में बहुत कुछ दिखाया, लेकिन हाँ ये फिल्में जो है देश प्रेम से ओतपोत फिल्म है, और इसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो अपनी फैमिली से प्यार कर सकता है, अपने घर वालों से प्यार कर सकता है, एक लड़की से प्यार कर सकता है, और अपने देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रह सकता है।

अब बात करेंगे देशभक्ति के दूसरे रंग की, बात करेंगे फिल्म सत्यमेव जयते की। लड़ाई सिस्टम के अंदर छिपे भ्रष्टाचार के खिलाफ। 2018 में आई मिलाप जवेरी की फिल्म जॉन अब्राहम ने वीरेंद्र वीर राठौर और मनोज बाजपेयी ने जो है डीसीपी शिवाशीष राठौर का किरदार निभाया। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई ये फिल्म। कहानी में मुंबई पुलिस के कुछ करप्ट ऑफिसर्स एक एक करके आग के हवाले किए जाने लगे और पुलिस के लिए यह एक मिस्ट्री बन गया कि कौन कर रहा है ऐसा और हर मर्डर के पीछे क्या मैसेज है। दूसरी तरफ डीसीपी शिवांश एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, उनका विश्वास था कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो सजा कानून देगा, लेकिन दूसरी तरफ वीर था जो कानून का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसका मानना था कि जब सिस्टम में भ्रष्ट लोग हैं, अगर सिस्टम भ्रष्ट हो गया है तो उसे बदलने के लिए किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा। और धीरे धीरे कहानी यूं ही आगे बढ़ती रही। कहानी में क्लाइमेक्स तब आता है जब वीर और शिवांश सिर्फ दुश्मन नहीं, उन्हें पता चलता है कि वो लोग भाई हैं, और यानी एक भाई जो है कानून का रास्ता चुनता है और दूसरा भाई नए अपने तरीके से न्याय करने के लिए जो है निकल पड़ता है। यही फिल्म का एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या सही है कानून का रास्ता या अपने आप हाथ में कानून ले लो। नहीं, ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं, और यही सवाल पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। इस फिल्म की सबसे चर्चित चीज़ों में से एक था इसका प्रेजेंटेशन। फिल्म में करप्शन और पुलिस सिस्टम जैसे सीरियस सब्जेक्ट को बेहद कमर्शियल और एक्शन थ्रिल स्टाइल में पेश किया गया। इसके लिए राइटर डायरेक्टर मिलाप चवेरी थे जिन्होंने फिल्म लिखी और डायरेक्ट की।

दोस्तों, अब जो है एक येलो वार्निंग आई है वो आप तक पहुंचा दूं। आज 16/8/2026 को शाम को 6:25 पे ये वार्निंग आई है कि अगले 2-3 घंटों के अंदर जो है बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम के कुछ जिलों में, कुछ हिस्सों में मध्यम से गरज बारिश के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। साथ में जो है 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना है। तो ऐसे में जो है आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें। घर से बाहर नहीं निकलना है तो मत निकलिए ना, बैठ के FM में गाने सुनिए, मैं हूँ तो। और ऐसे में अगला गीत बिल्कुल तैयार, सुन रहिए, साथ रहिए 107.9 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

8:30 स्टूडियो के घड़ी में वक्त, और अब मैं जिस फिल्म की बात करने वाली हूँ उसकी बात करूंगी, पहले ये गीत सुन लीजिए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: यादों की बारात।

बैक टू बैक दो गीत सुने आपने. पहला गीत तो आपने सुना फिल्म सत्यमेव जयते से तेरे जैसा. दूसरा गीत अभी आपने जो सुना मोनो बिना, ये आपने सुना फिल्म गोल्ड से. जी हाँ, अब बातें होंगी फिल्म गोल्ड की. 15 अगस्त 2018 को सत्यमेव जयते और गोल्ड दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी. और गोल्ड की कहानी अपने आप में अनोखी है. जहाँ आपने एकता टाइगर में बॉर्डर की आईएसआई रॉ की बात सुनी, वहीं सत्यमेव जयते में करप्शन की बात हुई. अब बात होती है देशभक्ति के एक और रंग की, एक और तरीके की. फिल्म गोल्ड में आजाद भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड कैसा महसूस हुआ होगा, सोच के देखिए. वही कहानी दर्शाई गई, एक आदमी कैसे उस वक्त में उस परिस्थिति में गोल्ड लेकर आया, वो टीम कैसे खेली होगी, कैसे जीती होगी, यही दर्शाता है देशभक्ति का एक नया रंग. एक ऐसा देश जिसने अभी अभी आज़ादी पाई हो, जिसके चारों तरफ जो है पार्टीशन का दर्द हो, और उसी समय इंडियन हॉकी टीम मैदान पर उतरे अपने देश के नाम से, यही भावना 2018 की फिल्म गोल्ड की थी. रीमा कागती ने के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार ने तपन दास का किरदार निभाया था. फिल्म ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड थी, लेकिन यह किसी एक रियल हॉकी प्लेयर की बायोपिक नहीं है. कहानी में 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स से लेकर 1948 के लंदन ओलंपिक्स तक के लेकर जाती है. तपन दास का सपना है कि एक दिन इंडिया अपने नाम से ओलंपिक गोल्ड जीते, लेकिन फिर आता है वर्ल्ड वार, ओलंपिक्स रुक जाता है, फिर आता है 1947, इंडिया आज़ाद होता है, लेकिन उसी आज़ादी के साथ आता है पार्टीशन का दर्द. लोग बढ़ जाते हैं, खिलाड़ी बढ़ जाते हैं, और एक हॉकी टीम का सपना पूरी तरह से टूटने लगता है. लेकिन तपन हार नहीं मानता, वो अलग अलग जगहों से प्लेयर्स ढूंढता है और एक नई टीम बनाता है. और अपना सपना सिर्फ मेडल जीतना नहीं है, वो चाहता है कि पोडियम पर खड़े होकर दुनिया पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा देखे. और फिर आता है लंदन ओलंपिक्स 1948, जिस असल इतिहास में इंडिया हॉकी टीम ने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था. यह आज़ाद भारत का ओलंपिक गोल्ड था, और इसी वजह से गोल्ड का फाइनल सिर्फ एक हॉकी मैच नहीं लगता, वो जैसे एक नए देश की पहली बड़ी स्पोर्टिंग अनाउंसमेंट थी. हम आज़ाद हैं और हम जीत सकते हैं.

अब थोड़ी बात करते हैं पर्दे के पीछे की। तो हॉकी फिल्म हॉकी पर थी, लेकिन गोल्ड के सेट पर सिर्फ हॉकी नहीं खेली जाती थी। अक्षय कुमार और बाकी कास्ट जो है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और आर्म रेसलिंग, यू नो, और कई दूसरे गेम्स भी खेलते थे सेट पे। अक्षय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि गेम्स इसलिए भी शुरू किए जाते थे क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी कास्ट आपस में बॉन्ड रहे और सिर्फ स्क्रीन पर टीम ना दिखे, एक टीम है वो बॉन्ड जो है उनके चेहरे पर दिखे। टीम एक हॉकी टीम थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन कास्ट ने टीम बनाकर खेला और फिल्म जो है दर्शाया गया कि देशभक्ति का ये रंग भी कुछ कम नहीं, अनोखा है लेकिन बेहद खास है। सुनते हैं एक और गीत इसी फिल्म से।

अब हॉकी के मैदान से सीधा चलते हैं मंगल ग्रह पर। याद है मिशन मंगल 2019 में आई थी जगन शक्ति की। इस फिल्म ने अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, कृति कुल्हारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकारों ने साइंटिस्ट के टीम के हिस्से निभाए थे और जो है इस किरदार को निभाया था। कहानी बेस्ड है इसरो के मार्स ऑप्टर मिशन यानी मंगलयान पर। फिल्म में एक फेलियर के बाद साइंटिस्ट को मार्स मिशन की तरफ भेजा जाता है। शुरुआत में मिशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है लेकिन रिसोर्स सीमित है, टाइम कम है और सबसे बड़ी बात लोगों को भरोसा ही नहीं कि इंडिया इतनी कम लागत और लिमिटेड रिसोर्स में मार्स तक पहुँच सकता है। लेकिन साइंटिस्ट हार नहीं मारते, वो कहते हैं प्रॉब्लम बड़ी है तो सोल्यूशन सिंपल बनाओ। और फिर शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जिसमें साइंस के साथ साथ टीम वर्क, इमेजिनेशन और जुगाड़ भी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और सारी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन हो जाता है। रेडियो पर ये बात ज़रूर साफ कहनी चाहिए कि मिशन मंगल डॉक्यूमेंट्री नहीं थी लेकिन एग्जैक्ट बायोपिक भी नहीं थी। असल मार्स ऑप्टर मिशन 5 नवंबर

2013 को हुआ था, लॉन्च हुआ था 24 सितंबर 2014 को जो है मार्स ऑप्टिक ऑर्बिट पे पहुंचा था। और सबसे बड़ी बात, इंडिया पहली कोशिश में मार्स ऑप्टिक ऑर्बिट तक पहुंचने वाला देश बना। इसरो के अनुसार मिशन का जो बजट था वो करीब 450 करोड़ था, यानी फिल्म की कहानी में जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला भावना है उसके पीछे एक असली साइंटिफिक अचीवमेंट जरूर है। और यही फिल्म जो है देशभक्ति का एक और नमूना है। तो दोस्तों एक बार फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। एक था टाइगर, एक स्पाई जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी पहचान तक छुपा देता है। सत्यमेव जयते, एक पुलिस ऑफिसर जो कानून और न्याय के बीच में मुश्किल लड़ाइयां लड़ता है। गोल्ड में हॉकी प्लेयर्स हैं जो आजाद भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड जीतने का सपना देखते हैं। और मिशन मंगल, वो साइंटिस्ट जो धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल तक भारत का नाम पहुंचाते हैं। चारों कहानियां अलग हैं लेकिन इन चारों के पीछे एक भावना है जो सेम है, कुछ ऐसा कर गुजरना जिससे सिर्फ अपनी ही नहीं अपने देश की भी पहचान बने। और शायद यही वजह है कि इंडिपेंडेंस डे पर ऐसी फिल्में हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करती और ज़्यादा अपने बॉर्डर से, अपने लोगों से, अपने देश से जोड़ती हैं। कोई बॉर्डर पर खड़ा है, कोई लिबर्टी में खड़ा है, कोई हॉकी फील्ड पे है, तो कभी पुलिस यूनिफॉर्म में है। ये सब जो है हमारे साथ है। और आज 16 अगस्त को हमने ऐसी चार फिल्मों के ऊपर बात की जो कि देशभक्ति के अलग अलग रंग को दिखाती है। रुक करते हैं इस गीत की ओर।

0: पेमेंट्स, रात का खाना अगर बच जाए तो सुबह तड़का लगा के नाश्ते में दे दो। Why waste?
1: आपको होम साइंस और रॉकेट साइंस इस पे कोई फर्क नजर नहीं आता?
0: नहीं सर।
2: सर क्या कर रहे हैं?
3: चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम पूरा।
2: Go,
3: चांद।
2: सर।
1: Go.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।